वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इनटू फ्राइडे विद रिचा। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी जी की शानदार ऑस्ट्रेलिया विजिट की। पता है दोस्तों, मोदी जी ने कल एक बहुत ही मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती 1+1=2 नहीं बल्कि 1+1=11 है। How beautiful is that, है ना? Today, India and Australia are closer than ever before. हम सिर्फ ट्रेड पार्टनर्स नहीं हैं, हम ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। जब दो मल्टीकल्चरल ओशियंस पावर्स एक साथ आती हैं, तो दुनिया दोस्ती की नई मिसाल देखती है। ये बदलाव देखकर दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो लफ्जों से परे है दोस्तों। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी मिट्टी की खुशबू और हमारे देश का जोश हमेशा हमारे अंदर रहता है। सुनिए ये अगला गाना जो आपको सीधे हमारे बदलते और चमकते भारत की गलियों में ले चलेगा।

दोस्तों, भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। हम भारतवासी अपनी पूरी मेहनत और लगन से ऑस्ट्रेलिया में भी अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। और मोदी जी ने कल मेलबर्न में 25,000 देशवासियों को संबोधित किया और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि भारत सदा आगे बढ़ता रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। वहाँ स्टेडियम में ऐसा प्रचंड जोश देखने को मिला दोस्तों, जो एक लीडर के लिए नहीं बदलते हुए भारत के लिए था।

वैसे दोस्तों, कल मोदी जी ने हमारे भारतीय प्रवासियों की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ रहकर भी भारत से जुड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ में भी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर लगता है ना कि हाँ जी हाँ, हम सब सही राह पर हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ हाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ग्लोबली। तो चलिए, आज आप मुझे बताइए कि कल वो कौन सा विजुअल, कौन सा पल आपके दिल को छू गया। क्या आप भी उस 25,000 लोगों के क्राउड में शामिल थे? हमें ज़रूर बताइए। हमारा नंबर है 0457352163। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पे अपने वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में उसे ज़रूर शामिल करूँगी, ये मेरा वादा है। और मेरा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, अगर आप वहाँ पर शामिल थे और प्रधानमंत्री जी को आपने लाइव सुना। लेकिन उससे पहले आइए हम सुनते हैं कुछ और मजेदार बेहतरीन से गाने।

आपने ट्यून किया है 5VBI 103.1 FM, साथ में मैं हूँ रिचा और आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो

कल ऑस्ट्रेलिया आए, विक्टोरिया आए और उनको देखकर क्या धमाल, क्या धूम हुआ। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि जब हम इतने बड़े बदलाव की बात करते हैं तो हर रास्ता आसान नहीं होता। कल स्टेडियम के बाहर जहाँ हजारों चाहने वाले थे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका विरोध कर रहे थे। जी हाँ, वो उनको बहुत ही अलग फीडबैक दे रहे थे। दुनिया में अक्सर उन्हीं की बात होती है जो आगे बढ़ते हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। मोदी जी की यही खूबी उन्हें अलग बनाती है। निगेटिव फीडबैक हो या फिर उनकी कमियों को निकालने वालों की बातें हों, वो एक सीख की तरह लेते हैं। डेमोक्रेसी का यही तो नियम है, क्रिटिसिज्म से डरना नहीं बल्कि उससे सीख कर और बेहतर काम करना है। जैसे उन्होंने कल कहा कि चैलेंजेस चाहे जो भी हों, हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। उन्होंने हर भारतवासी को सीख दी कि गिले शिकवे छोड़कर हमें सिर्फ देश की तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात ही सोचनी चाहिए, वो चाहे भारतवर्ष हो और अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों तो हमारा इस समय देश ऑस्ट्रेलिया है, तो उसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम उसके लिए काम कर सकते हैं, वो ही हमें सोचना चाहिए। सुनिए ये अगला गाना जो हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ने की हमें सीख देता है।

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की ये लाइनें वाकई ही बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। रास्ते में चाहे जितने भी पत्थर आए, उन्हीं पत्थरों से तो सफलता की इमारत बनती है ना दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते आज जिस बुलंदियों पर हैं, उसमें हमारे देश की इसी मेहनत का हाथ है। कल जब ऑर्केस्ट्रा में मोदी जी के सामने माँ तुझे सलाम बजाया गया, तो हर एक आंख में आंसू और दिल में गर्व था। देश बदल रहा है और हम सब उस बदलाव का हिस्सा हैं। आपका क्या कहना है कल के इस शानदार दिन के बारे में दोस्तों? मोदी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है? कौन सी बात आपको अच्छी लगी? मुझे आप बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0457352163 और ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com। आप हमें लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे, तो हम आपके एक्सपीरियंसेस को अपने प्रोग्राम में ज़रूर ज़रूर शामिल करेंगे, ये मेरा वादा है। और आप कौन सा गाना हमारे प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो दीजिए इजाजत रुचा को, शुभ संध्या, बाय बाय, जय हिंद।